0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाग्छ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टी काफुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल सैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98246025। अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98246728225।
3: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
4: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली, फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9842423।

0: ट्राफिक कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई या झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरस गुर झोला अनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरह ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई या झोला उद्योग में रख गई या झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब वे अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्ती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से ऐना शुक्रवार से सोमवार सम नेपाल मा भारी से अति भारी पानी पर्न संभावना स्थानीय तह पूर्व सूचना में जोर दे के सतर्कता अपनाइदी। नेपाल मा भारी वर्षा हुना कहल पाछे यहाँ के स्थानीय तह में छलफल जुटी विपद के बेला में सकू जाने जुटना टीकापुर नगरपालिका के आग्रह। जानकी गांवपालिका से बजार अनुगमन करती डरता नहीं रलक पसल में मूल्य सूची नहीं ढरगिलक और मापदंड के पालना नहीं करलक व्यवसाय अंकुरण पालना करना निर्देश। उरानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम के ई वर्षा 30 करोड़ बजट। असोज 9 गते से 11 गते सम अति भारी पानी पर्न संभावना देखैलक से कैलाली के टीकापुर नगरपालिका से पूर्व तैयारी करते रहलबा। मंगलवार के संजय बैठल नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति के बैठक से बाढ़ जोखिम समेत भारी हुईसेक नरलक में चिंता समेत व्यक्त कर गिलबा। बैठक में सहभागी हुकुरा सरकार दल समुदाय सकु परिचालन हुई पर्नमा सहभागिता आवश्यक नानगिलबा। नगरपालिकामा बजेट कार्यान्वयन नै हिलक ओर्से विपद के आवश्यक साधन औषधि समेत उपकरण परिचालनमा कठिनाई हुइतिर हल बतागिलबा। कार्यक्रममा नगर प्रमुख रामबहादुर नागार्जी से सरकार से समेत काम पहिला खर्च गर्न हुल्पाछे भुक्तानी देन रलक ओर्से बजेट नै रलस फे पूर्व तयारी प्रतिकार्य के काममा सकु जाने जुटे पर्न कहलबाट जोखिमपूर्ण क्षेत्र व्यवस्थित बनाइना प्रतिनिधि सभा सदस्य हो प्रदेश सभा सदस्य हे जानकारी करागिलबा हो यहाँ के कुछ समेत नहीं रलक हो आपन अनुपस्थिति में नगर सभा रलक ओर से अख्तियारी के लग समेत दबाव देहे नहीं मिलना बतागिलबा। जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी सरकारी निकाय परिचालन हुई पर्ना हो समुदाय में समेत बलगर बनाई पर्नामा बतोले बाटें। अति भारी पानी आयल पाछे नगरपालिका के वार्ड नम्बर 8 के जोखिम में रहल समेत पुडाल टोल बस्ती में समेत सरना वार्ड नम्बर 5 और 8 के लदिया नियंत्रण केलाक रानी जमरा कुलरे सिंचाई आयोजना के सहयोग समेत मांगना निर्णय करगिलबा। आजकल फिर समेत देशभर स्थानीय वायु पश्चिमी वायु के प्रभाव रहलबा। ई वायु के प्रभाव से आज दोपहर के कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्र के स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहलबा। ऐना शुक्रवार से लेकर आतवार के सम देश के तमाम स्थान में भारी से अति भारी पानी पर्न संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनाइलबा। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के मौसम संबंधी सूचना जारी करल पाछे यहां स्थानीय तह में फे समेत सतर्कता अपनाइना कहलबा। नेपालमा मौसम विज्ञान विभाग के समेत मौसम पूर्व अनुमान महाशाखा से समेत आगामी शुक्रवार से लेकर आतवार के सम देश के तमाम स्थान में भारी से लेकर भारी पानी पर्ना संभावना रलक ओर से सतर्कता अपनाइना कहलबा। हाल बंगला के खाड़ी में मध्य भूभाग में समेत आसपास में रहल न्यूनचापीय क्षेत्र में थप सशक्तिकरण बनती गैलक ओर से एक प्रभाव नेपाल में फे पर्न रलक ओर से विभाग से जनाइलबा। एक प्रणाली के मुख्य असर विशेष करके असोज 9, 10 और 11 गते रहना हो। बागमती प्रदेश से फे समेत पश्चिम क्षेत्र में ढेर प्रभाव पर्न रलक महाशाखा से जनाइलबा। गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के अधिकांश भूभाग में भारी से लेके ढेर भारी ओ समेत एक दो स्थान में अति भारी पानी पर्न संभावना रलक ओर से उच्च सतर्कता अपनाई पर्ना मौसमविद के कहाइबा। लुम्बिनी के समेत दांग सेफे समेत पूर्व भूभाग में नवल परासीसम कर्णाली के पूर्वी भाग में ओ समेत सुदूरपश्चिम के दक्षिणी पहाड़ी तथा तराई भूभाग में पानी पर्न देखा गिलबा यी वर्षा से समेत देश के सक्कू जैसीन स्थान में प्रभाव पर्न रलक ओर से सक्कू नागरिक सचेत हुई पर्ना हो भारी तथा अति भारी पानी पर्न संभावना देखेलक क्षेत्र में नागरिक हुक्रा धेर सचेत हुई पर्ना मौसमविद विभूति पोखरियल बटोले मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से आगामी शुक्रवार से लेकर आतवारसम देश के तमाम स्थान में भारी से भारी वर्षा हुलक ओर से स्थानीय तहफे यी सूचना गांव टोल स्तर में पठेती रहलवा वर्षा पासे समेत ऐना बार पहिरो तथा भूछे से हुना क्षेत्री कम हुए कहना उद्देश्य से तमाम माध्यम से आपन टोल तथा व्यक्ति हुकरा सक्षम समक्ष समेत सूचना पैना काम करते रहल जानकी गांव पालिका विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र प्रसाद जैसे की कहाईबा उसमें करके टीकापुर नगर पालिका से फे जोखिम के क्षेत्र पहचान करके सकुन संगे समन्वय हो सहकार करके विपद में हुईना क्षति घटना का समेत काम में लागल बटैले बाट उसके टीकापुर नगर पालिका के वन वातावरण विपद व्यवस्थापन शाखा के निर्मला चौधरी जानकारी करले खो मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से करलक अनुसार यदि वर्षा हुई कल से भारी धनजन के क्षति हुई सकी वकर कारण ई क्षति घटना सक्कू जाने सचेतना अपनैना फे जरूरी बा। खोज खबरमा एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो
2: मैला भाग लगा बंदे उसे था पाव दे चु सब समा बनी घर में सकी न सकी सब काम करनु पर तो गाड़ो हुन्छ अपनी काम करने विदेश जानु आज के करने के नगर्ने के था छैन तो जन्म पड़े जस्ते
1: जस्तो राम्रो पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुबै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौं।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बावै। जानकी गाउँपालिका से बजार अनुगमन करलबा पालिका भीतर संचालन में रहल पसल मन से बिक्री वितरण कतिरलक सर सामान गुणस्तरीय तामा चेक जांच करना उद्देश्य से बजार अनुगमन करगेल गाउँपालिका से जनाइलबा। दुर्गोली बजार अनुगमन करेबेर पसल दर्ता हुईल नहीं हुईल नवीकरण हुईल नहीं हुईल सामान के मूल्य सूची धरल नहीं धरल सामान म्याड ओरैलक नहीं ओरैलक बातमा हेरती रहलबा। अनुगमन समिति के संयोजक तथा उपाध्यक्ष लालमती कठरिया से अनुगमन के क्रम में दर रेट तथा मूल्य सूची कौनो पसल में हुईल नहीं हुईलक पागिल बतागिल बा। दर रेट तथा मूल्य सूची नहीं धरलक पसल संचालन हे समेत आगामी दिन में दर रेट मूल्य सूची धरना सरसफाई में ध्यान देना सुझाव दैगिलबा। पशु सेवा शाखा के प्रमुख संतोष मल्लिक से मासु कटना वर्षशाला में सरसफाई नहीं हुलक देगिलक ओर से सरसफाई में ध्यान देना आग्रह करलबाटै। योजना तथा अनुगमन शाखा के संदीप साउट से स्थानीय तह में व्यवसाय संचालन करोबेर वाड़ा कार्यालय में अनिवार्य दर्ता करे परिणाम बतवैले बाटै। व्यापारी प्रमिला चौधरी पसल मन से अनुगमन करना मजा काम रहल बतैती यी अनुगमन से अपना हुक्रान सचेत समेत करैती रहल बटोले बाटै। और व्यापारी राजेन्द्र नेउपाने से पसल अनुगमन में बजार चोक चौराहा में केल नहीं हुके गांव भीतर लंगफी समेत कर पर्ना हो। वर्षमा एक पटक के नैहुके नियमित अनुगमन कर पर्ना बथोलीबाट अनुगमनमा कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी चौधरी, पार्वती चौधरी, योजना तथा अनुगमन शाखा के प्रमुख हिरालाल चौधरी, स्थानीय बजार व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष चन्द्रभान बम, स्वास्थ्य शाखा के शोभा चौधरी, कृषि शाखा के ममता राणा, कर्मचारी दिलबहादुर चौधरी, प्रहरी, पत्रकार लगायत के उपस्थिति रहल रह अनुगमन पाछे। अनुगमन के काम है आगामी दिन में निरन्तरता देना निष्कर्ष निकारगिल कलश अनुगमन के क्रम में दुर्गौली बजार में रहल किराना पसल, होटल, बटसला लगायत अनुगमन करगिल। कैलालीमा संचालित रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर से ई वर्ष 30 करोड़ बजेट छुट्याल बा। योजनामा कृषि तथा पशु शाखा तथा प्राविधिक विकासमा ई बजेट खर्च हुदिबा। आयोजना से आलू खेती, केरा खेती, ब्रिज वृद्धि जैसी कार्यक्रम है प्राथमिकता देती रहलबा। एक साथ कोल्ड स्टोर निर्माण के काम में 95% ओरायलो। यह वर्ष से मेसिन से समेत यह वर्ष मंगसिर महीना से संचालन में रहना योजना रहल। आयोजना के कोर्डिनेटर भरत कडेल जानकारी दिले बाटें। खोजखरमा फेन्से विश्राम, विश्राम पाछे फेर्से विश्वन टेलिभिजन सामुदायिक रेडियो टिका प्रफेम।
3: के तपाई चाया, डन्डीफोर, दाद, एलर्जी, कपाल झर्ने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
5: अब टीकापुरमा रहेको मनीष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बु
3: यही असोज 10 गते शनिबारका दिन
5: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
3: मनीष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू: अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या, छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने, इक्जेमा, सोरियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने, साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट, छाती, मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ। डाक्टर आउने दिन यही असोज 10 गते शनिबार।
5: स्थान मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर 1, कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 98600071024 र 98046777417।
6: टीकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको सम्भावित भारी वर्षा र बाढी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। आदरणीय नगरवासी आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार आउँदो असोज 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत यस क्षेत्रमा बढ़ी अथवा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। टीकापुर नगरपालिका कर्णाली नदी र स्थानीय नदी कुलाहरूको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले अत्यधिक वर्षाका कारण आकस्मिक बाढ़ी, डुबान र कटानको उच्च जोखिम देखिएको छ। तसर्थ धनजनको क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अपील गर्दै निम्न बमोजिम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौ। मुख्य सावधानी तथा पूर्व तयारीका उपायहरू: नदी किनारमा नजाऊ, बाढ़ीको समयमा माछा मार्न, काठ दाउरा संकलन गर्न वा पौडी खेल्न कर्णाली नदी र स्थानीय खोला खहरेहरूमा नजाऊ। महत्वपूर्ण कागज तथा सामान सुरक्षित राखौं। आफ्नो नागरिकता, जग्गाधनी पूर्जा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, औषधि र नगद गहना जस्ता बहुमूल्य सामानहरू वाटर प्रुफ झोलामा राखेर घरको सुरक्षित वा अग्लो स्थानमा राखौ। बाली नाली भित्राउन हतार नगरौं। धान भित्राउने मौसम भए तापनि मौसमको यकिन नगरी कृषि कार्य नगर्नुहोला। काटेको धान भए तत्काल सुरक्षित

विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा सर्वोच्च अदालत से नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के संस्थापक नेता रेशम चौधरी के कैद माफी मिना है सदर करल बा न्यायाधीश शुक्रा सरंग सुवेदी हो श्रीकांत पौडेल के इजलास से चौधरी है माफी मिना देना राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निर्णय है सदर करल के हो माफी मिना विरूद्व के सर्वोच्च अदालत पुगल सारा कडाइट से रिट निवेदन खारिज समेत हुई बतागिल बा जेठ 2080 में राष्ट्रपति पौडेल से संविधान के धारा 276 अनुसार चौधरी है माफी देना निर्णय कर रहा संविधान के धारा 276 में राष्ट्रपति से कोने अदालत न्यायिक व समेत अर्ध न्यायिक निकाय व प्रशासकीय पदाधिकारी व निकाय से समेत कर लग सजाए है कानून बमोजिम के माफी मुलातबी समेत परिवर्तन व समेत काम करना हुना कहना व्यवस्था हलबा ई बेला माफी गृह मंत्रालय से मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता एन 2074 अनुसार समेत सजाय माफी के समेत प्रक्रिया आगे बढ़ेलक बतागिलवा एन से समेत दफा 159 में अदालत के फैसला बमोजिम सजाय माफी व्यक्ति हुकरन समेत माफी पैना मूलताबी समेत धरना औसक परिवर्तन वा कम करना गृह मंत्रालय मार्फत राष्ट्रपति है निवेदन देह सेकना व्यवस्था हलवा रेशम चौधरी टोकल जन्मकैद के फैसला सदर होना कहके सर्वोच्च अदालत से करलक फैसला के पूर्ण पाठ तैयार नहीं हुला को अवस्था में राष्ट्रपति पौडेल से माफी मिन्हा देलक बतागिल बा 7/2/82 में कैलाली के टीकापुर में हुईलक आंदोलन के क्रम में एक नाबालक सहित 8 जने सुरक्षाकर्मी के मौत हुई जिला अदालत कैलाली से टीकापुर के घटना के मुख्य योजनाकार रहलक ठहर सहित के पूर्व सांसद रेशम चौधरी सहित 8 जन है जन्मकैद के फैसला सुनायल रह सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भत्ता से मुक्त कमैया हुकरन के आवास तथा जीविकोपार्जन संगे जोर गिलक समस्या समाधान केलक प्रदेश सरकार गंभीर रहल बटवा गिलबा आपन आवास सहित के गास बास के समस्या समाधान देना करके मांग करती मुख्यमंत्री निवास पुगलक समेत मुक्त कमैया हुकरन के प्रतिनिधिमंडल हुकरन संगे भेट में मुख्यमंत्री भत्ता से मुक्त कमैया हुकरन के समस्या समाधान केलक प्रदेश सरकार के आवश्यक पहल करे पन्ना बटवा गिलबा मुख्यमंत्री भत्ता से मुक्त कमैया हुकरन के समेत आवास लगायत के समस्या समाधान केलक आगामी बजेट में नई आवश्यक व्यवस्था करना प्रतिबद्धता व्यक्त कर यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से ऐना शुक्रवार से लेके सोमवार सम नेपाल मा भारी से लेके अति भारी पानी पर्न संभावना स्थानीय तह पूर्व सूचना में जोर दे के सतर्कता अपनाई नेपाल भर वर्षा हुईना कहल पाछे स्थानीय तह उछलफल में जुटी विपद के बेला सकू जाने जुटना टीकापुर नगर पालिका के रहा जानकी गांव पालिका से बजार अनुगमन करती दर्ता नई रलक पसल मूल्य सूची नई ढरगिल ओ मापदंड के पालन नई करलक व्यवसाय उपकरण पालन करना निर्देश पुरानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना के कृषि कार्यक्रम से ई वर्षा 30 करोड़ बजट छुटे लिटा बतलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी अब्बे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रहिए राम राम।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कबू झोले फटा का आज था कहा हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागि विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइने का साथ ही थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ
4: संचालक आरती चौधरी संपर्क नंबर 98624703383

0: गर्न पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
1: एल्भिस एल्बिरा ट्रेडर्स, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811 67 38।

0: कापी रहित कभी पेंसिल रहित कभी झोले फटा का आज का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर रही थी राहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कही था कभू पेंसिल हेरा कही था कभू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चेक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमर फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू।

0: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वडा कार्यालय के अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बांध देवी सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाए बांध के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा ले पर्ना बा।
0: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडा कार्यालय लाइकपुर। घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
2: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
0: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
0: अब त म ढुक्क।
3: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
2: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
4: छिच्छी, फे चर्पी भरगिल का करना हो का?
2: चर्पी भरल से फे का चिन्ता? आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाईमा फोन करी आ बाक सरसफाई कै दिही।
4: फोन नम्बर कटा हो त
2: ली डायल करी 97-620-20-300।
4: हेलो, आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई हो?
5: हजुर हो।
4: महिन राजापुर बजारमा ट्याङ्की सफाई गर्न बा?
2: अपनौ कन्थे, टिकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सत्ती, राजापुर, गेरुवा ओ लम्की मन सेफ्टी ट्याङ्की, गोबर ग्यास ओ रिङ वाला टोयलेट सरसफाई कर परिकलसे आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाहन सम्झवे। संचालक शेरबहादुर थारू। सम्पर्क नम्बर 97-620-20-300 ओ 98-656-92-026।
6: कागजात हराएको सूचना। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कमला सुडारीको पासपोर्ट कक्षा 8-10-12 का मार्कसिट लगायतका कागजातहरू शुक्रबार दिउँसो 12 बजेतिर टिकापुर खडकचोकदेखि जमरा पारी पेट्रोल पम्पसम्म जाने क्रममा बाटोमा हराएकाले पाउनुहुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नम्बर वा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा बुझाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। पाउनुहुने महानुभावहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क नम्बरहरू 97-64-26-70-90 र 98-15-60-67-05।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटास गोर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएल को सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
4: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्ट पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
3: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, संचालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 98-68-55-10-00।
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
6: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
6: ईसीजी सेवा,
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
6: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
5: फोन नम्बर 98-484-27-359 र 98-48-42-73-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।

सुजना सुनचाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 98095443893।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के होस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर रही थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिकला झोला है मरमर फेकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
0: सूचना यही भाद्र 29 गति देखि असोज 8 गति सम्म गणेश उत्सव 2083 हुने भएकोले सम्पूर्ण टीकापुरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। कार्यक्रम हुने स्थान सामुदायिक एफएम चोक टीकापुर एक कैलाली, आयोजक टीकापुर सेवा समिति टीकापुर।

0: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाली पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचालीका गहना पाइन्छन् रे।
1: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
0: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
1: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
0: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
1: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
2: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
1: सिर्जना सुन चाँदी पसल, बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
3: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? 500 से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल।
4: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो नी करत का कहीं हो का।
3: मिस्तरान बर्जन होकर न घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट, आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहो र घूम जाए तो था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848541436।
7: के तपाईलाई थाहा छ,
8: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
7: हो र?
8: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
7: अनि
8: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
7: के छ त विकल्प?
8: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
7: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
8: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
7: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
8: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर कैलाली।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्ध्या 5 बजे थारूभाषक खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना ध्यान में देख काम कर मौसमविद के नागरिक न आग्रह। कैलाली के डल्फिन क्षेत्र में डल्फिन के गणना व आहरा के सर्वे। कैगिल शिव पार्वती महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता के आय आर्जन में सहयोग करती सहयोग पाइल पाछ उपभोक्ता हुका खुशी। ओ प्रतिनिधि सभा से भुगतानी तथा फरछेउट सम्बन्धी पहल संशोधन विधेयक स्वीकृत। आप खोज खबर विस्तार हाल देशभर मनसूनी वायु के संग पश्चिमी वायु के फे आंशिक प्रभाव रहल बा। संग बंगाल के खाड़ी के न्यूनचापीय क्षेत्र हाल पश्चिम मध्य तथा आसपास के उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी में गहिर न्यूनचापीय क्षेत्र के रूप में रहल बा। ऐना दिन में थप शक्तिशाली बंती पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा उहर सर्ना डेगजाइट यी सेकरबेर हाल देश के हिमाली भूभाग में साधारणतया बद्री लागल बा। कलशे पहाड़ी व तराई भूभाग में फे बद्री लागल बा। कुछ ठाउँ मना हल्का थेसे मध्यम वर्षा समेत ठुटी रलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनागिल बा। ऐना असोज 9 गते शुक्रवार थेसे असोज 11 गते आईतवार सम्म गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश के कुछ ठाउँ मना मेघ गर्जन चट्याङ हावाहुरी सहित भारी वर्षा भारी थेसे अति भारी वर्षा तथा 1-2 ठाउँ मना ढ्यूर भारी वर्षा के संभावना रहल बा। संग मध्य प्रदेश तथा कोशी बागमती व सुदूरपश्चिम प्रदेश के डांचे ठाव में फे मेघ गर्जन चट्याङ हावाहुरी सहित भारी थेसे ढ्यूर भारी वर्षा के तथा कर्णाली प्रदेश में फे कुछ ठाव में भारी वर्षा के समेत संभावना रहलक मौसमविद हरिप्रसाद दाहाल जानकारी दिलबाट। भारी थेसे अति भारी वर्षा हुना पूर्वानुमान करगिल कुहरसे वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्र में भूछय बाढ़ी पहिरो तथा गेग्रान बहाव के जोखिम रहलक कुहरसे शहरी तथा तराई क्षेत्र में डुबान के जोखिम रहलक भारे हो छुटी लद्या नाला खोलुआ मन पानी के सतह बरह सेक्ना डेगिल बा। यी समय मन दैनिक जनजीवन कृषि स्वास्थ्य पर्यटन लगायत के नदी क्षेत्र आसपास के निर्माण कार्य सड़क तथा हवाई यातायात समेत प्रभाव भईसेकना हुईल कुहरसे आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तैयारी अपनाई मौसमविद दाहाल सकुहन हन अनुरोध गर्नबाट। कैलाली के डल्फिन क्षेत्र मन विश्व के दुर्लभ जलचल प्राणी डल्फिन के गणना कैगिल बा। कैलाली दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मन रहलक मोहना पथरैया काँडा कन्द्रा व कर्णाली लद्देक तल्लो तटीय क्षेत्र मन यह असोज 3-5 गते समय डल्फिन के गणना करगिल खो। ऊ लद्देक विस्थो क्षेत्र मन डल्फिन के गणना करगिलक डल्फिन जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र नेपाल के अध्यक्ष नेपाल कैलाली के अध्यक्ष भोजराज ढुंगाना जानकारी दिलबाट। याकरसँग डल्फिन के आहार के विषय में फे सर्वेक्षण के काम कैगिल बा। राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया के प्राविधिक सहयोग मन डल्फिन के गणना व वाकर आहारा के सर्वे के काम करलक अध्यक्ष ढुंगाना बटुलबाट। डल्फिन के गणना व वाकर आहारा के सर्वे मन स्थानीय डल्फिन संरक्षण समिति व डल्फिन जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र नेपाल कैलाली के फे सहभागिता रह। प्राविधिक सक्कु काम राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया करना हुई लकुहरसे गणना व सर्वे के नतीजा आईना आमहीन कुछ दिन लगना अध्यक्ष ढुंगाना के कहाइबा। लोक न्यावल्या लेखन ओ गायन के पारखी मान बहादुर केसी मुस्कान आपन पाचक सांगीतिक कोशेली प्रभु नांगाटोला गीत सार्वजनिक कलबाट। अछाम जिल्ला के मंगलसेन नगरपालिका 9-20 मन जन्मल होकल कैलाली के टीकापुर कर्मठलो बनाइल हुईलक मुस्कान आपन उपनाम मुस्कान यूट्यूब से गीत के भिडियो सार्वजनिक कलबाट। खायो गर्या जियो गर्या प्रभु नाङ्गाटोला दुःख कष्ट नपरून् कलाई रक्षा होला कना शीर्षक गीत लेखन पहाड़ी संस्कृति मना आपन पुर्खा मन्टी ऐलको कुल देवता प्रति सन्तान हुकन के सम्मान भाव ओ अपेक्षा छल्का गिल्बा गीत मना बिन्ती गर्छु झुल्याई खेत झुकाई खेर शिर कना अन्तरा सेफे देवी देवता प्रति के समर्पण ओ विश्वास देखा जाएठ देवस्थल नाङ्गाटोला नौबीस स्थित राधा मावी आंजर पांजर के दृश्य देखा गिलक वीडियो मन विद्यालय के बाल बालिका शिक्षक शिक्षिका गांव के महिला पुरुष देखा गिलबा देश और प्रदेश के बसाई के अनुभव संगालल हुईलक मुस्कान गीत से कुल देवता से देश प्रदेश में रहल हुईलक शकुन के रक्षा हुआ कना कामना करलबाट कला संस्कृति व जन्म स्थल प्रति के व्यवहार मन भावनात्मक निकट तथा धरना मुस्कान के दस मिनट के गीत जन्मस्थल के वर्णन हो कुल देवता प्रति सम्मान हो भरोसा मन खर्च हुईलबा शुरू मन भजन के तैयारी करक गायल हुईलक मुस्कान पाछ भाकल हुईती गीत के रूप मन लनलक बटुलबाट मुस्कान केसी के शब्द संरचना ओ स्वर रहल गीत मन सुरेश शाही भगवती राउत स्वर देलबाट कलसे ललिता बोहरा के अभिनय रहलबा छायांकन स्थल मन खेलमा सहभागी हुई औया हुकन के संख्या ध्यूर हुईलबा छ व्यवस्थापन करती महिला व पुरूष के बाहर भीतर अलग अलग घेरा बनाक लौ अभ्यास देखा गिलक मुस्कान के कहाईबा केसी इहे वर्ष ईस्याघ 2071 साल मना हाँसी रमाई रमाई एल्बम गीत 2072 साल में कठै दैव टुलाई कना गीत हाँसी हाँसी रमाई भाग दुई गीत दशैं के रमझम घर छाडी घरबारी छाडी गीत बजार में लान्छेकलबाट कलसे गाउँ भगैया खाली खोल को गीत के छायांकन होकन दशैं के अवसर मन सार्वजनिक कर अलग अलग उहाँ बटुलबाट खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछ फेर फेनी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछु भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
6: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
6: ईसीजी सेवा
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
6: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
5: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
7: सुन्न सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
8: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
7: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
8: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
7: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
8: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
9: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल, बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095443893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच अमौरी स्थित शिव पार्वती महिला सामुदायिक वन विक्रम सम्बत 2057 सालमा स्थापना हुइलको। महिला हुक्र संरक्षण कर्ती रलक बन्नुमन आब 152 जना उपभोक्ता रहलबाट। सामुदायिक बन्नुमा से उपभोक्ता घाँस काठी पैना पैटीएलबाट। छुट्टी बनुवा हुईल से फे वन समिति उपभोक्ता के आय अर्जन के सहयोग बन काम करती एलबा। शिव पार्वती महिला सामुदायिक बनुवा वन पैदावार काठ बिक्री वितरण संगै उपभोक्ता के आय अर्जन में सहयोग करना करल बा। उपभोक्ता आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनाई लगी अति विपन्न उपभोक्ता बंगुर बाख्रा के पाठा वितरण करना काम करती रह बा। याकर संघ सामुदायिक बनुआ सामाजिक विकास के क्षेत्र में फे ढ्यूर काम करती रह बा। बनुआ उपभोक्ता के जीवन सहजता के आवश्यकता सहजता के लाख आवश्यकता के आधार में सहयोग करना फे करती रह बा। वस्तक सामुदायिक बनुआ विपन्न उपभोक्ता आर्थिक सहयोग अति विपन्न परिवार दवाई खर्च के लागि सहयोग फे करना करल बा। सामुदायिक वन के अध्यक्ष फूलपति चौधरी उपभोक्ता हुकन सहयोग करती ऐलक बटुल्लबाट। सामुदायिक वन के सहयोग से उपभोक्ता समेत खुशी हुइलबाट। उपभोक्ता लक्ष्मी चौधरी बन्नुमा से बाख्रा पाइल पाछा बाख्रा पालन करती रहलबाट। बाख्रा पालन कर लागल पाछा वहाँ घर खर्च चलाई दवाई उपचार मन सहयोग पुगल बा। लक्ष्मी चौधरी जस्ता प्यारी चौधरी फे सामुदायिक बन्नुमा से बाख्रा पाइल पाछा बाख्रा पालन कर घर खर्च चलाई वो बाल बच्चा पढ़ाई सजिलो हुइलक बटुलबाट। रामकुमारी चौधरी हना सामुदायिक बन्नुआ आयार्जन कार्यक्रम मार्फत बंगुर के पाठा देहल पाछ वहाँ बंगुर पालन करती रहलबाट। बनोमा से पैलक बंगुर पालन करल पाछ बाल बच्चा पढ़ाई दवाई उपचार कर व खर खर्च चलाई सजिलो हुईल पाछ वहाँ फे खुशी बाट। सामुदायिक बनुआ उपभोक्ता हुकन वन पैदावार बिक्री वितरण संग सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम करना मजा हो। सामुदायिक बनुआ 80 का उपभोक्ता हुकन सहयोग करल पाछ हुकन के आय स्तर सुधार के लागि सहसुना देख जायत। उहमार सामुदायिक बनुआ ऐना दिन में उपभोक्ता प्राथमिकता में धर्कन काम करपना उपभोक्ता हुक्र बटुट। कर्णाली लदेक किनार मन महिला के सब भेटागिल्बा। कैलाली के टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 जनशक्ति सामुदायिक वन स्थित कर्णाली लद्या किनार मन महिला के सब भेटागिलक हो। करीब 30-32 वर्ष के जसिन देगजिना लद्या किनार में भेटागिलक महिला के सब सरल गरल अवस्था में रहलक प्रहरी से जनागिल्बा। तर जीन्स पैंट उज्जर मोजा लगागिलक अवस्थामा भेटागिलक सबके पहिचान हुइनी सेकलक। वो सब टीकापुर अस्पतालमा धैगिलक। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरके प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाङ्गी जानकारी देलबाट। सामुदायिक वनके पदाधिकारी लड्या किनारमा सब देखल पाछा आज बिहान 11 बजे उहर प्रहरी हेर्न खबर कर्लरल। दलित समुदाय के समस्या चुनौती व अधिकार के विषय हन समेत का सरकार आग बढ़ाई लगलग विधेयक के लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश से सुझाव संकलन कैगिल्बा। दलित महिला संघ व दलित महिला अधिकार मंच नेपाल के संयुक्त आयोजना मन हुईल कार्यक्रम मन राजनीतिक सामाजिक तथा सरकारी निकायमा दलित समुदायकै समानुपातिको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर पर्नामा सहभागी हुक्र जोर देलाबाट। कार्यक्रममा सहभागी हुक्र राजनीतिक दलके केन्द्रीय थेसे स्थानीय तहसम्मकै संरचनामा दलित समुदायकै जनसंख्याकै अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर पर्ना बटुलबाट। वस्तक संघीय सांसद प्रदेश सांसद तथा राज्यकै अन्य निर्णायक तहमा फे दलित समुदायकै समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहलक हुकनके कहाई रह। कार्यक्रममा सहभागी हुँ र समाजमा आमेन्फे दलित समुदाय विभेद हो उत्पीड़न भोक्ति भुवाग पर्लक बटुल कतरा अवस्थामा सरकारी निकायसे समेत उचित व्यवहार निपैलक गुनासो नै पैना कलक गुनासो कति राज्यकै सक्कु तह व निकायमा दलित समुदायकै अधिकार सुनिश्चित गर ठोस कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहला खुक्र बटुलबाट सहभागी हुँक्र दलित समुदायकै सामाजिक प्रतिष्ठा अधिकार विकासना मजबूत बनाई स्थानीय तहसे समस्या व चुनौती पहिचान गर्क सुझाव तथा तथ्याङ्क संकलन गर्क केन्द्र सरकार समक्ष बुझाइ पर्नामा जोड़ दिएलबाट शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय लगायतकै क्षेत्रमा दलित समुदायकै स्पष्ट व्यवस्था करपना माग समेत कार्यक्रममा उठा गिल्बा खोज खबर म फेरफे विश्राम विश्राम पाछैनिनी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
10: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्यालढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
11: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठभन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
10: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
11: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
10: अब त म ढुक्क
12: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरा पारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनराज भार
11: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरा पारी टिकापुर कैलाली
13: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
14: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबारका दिन
15: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
13: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
15: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला
14: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार
16: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा प्रतिनिधि सभाकै आजकै बैठकले भुक्तानी तथा फरछेड पहिलो संशोधन विधेयक 2083 उप सैद्धान्तिक छलफल पाछ सर्वसम्मत लेखन स्वीकृत हुइल्बा बैठकमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यभार सम्हालर हुइलक अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगले विधेयक उप विचार कर्जाएकन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ल छलफलमा उठैलक प्रश्नकै जवाब देती मन्त्री वागले प्राप्त सुझाव ग्रहण गर्ती वफादार छलफलकै क्रममा न सम्बन्धित समितिमा थप छलफल कना बटुल वहाँ प्रणालीगत तरलता लगायतकै विषयमा विद्यमान संरचना सम्बोधन गर निषेक लकुहरसे अर्थतन्त्रकै सुधारकै प्रयासकै रूपमा यी विधेयक नलक बटुलबाट छलफलमा सांसद ठुक्र सुशील खड्का नीतिमा भण्डारी कार्की प्रेमलाल चौधरी कृष्ण हरि बुढाथोकी गणेश पौडेल निनु कुमारी कर्ण प्रेमबहादुर बोयक मधु कुमार चौलागाई यशोदा कुमारी बराल ओ परशुराम तामाङ भाग लिएर रहल हुक्र विदेशी डिजिटल भुक्तानी नेपालमा न ऐलक स्वागत कर्लस हुइलसेफे उइसे नेपाल हुइना लाभ ओ सुरक्षित कारोबार बारे स्पष्ट हुइपनामा जोड़ देलबाट उ विधेयक उप नियमावली बमोजिम संशोधनकै सूचना दिए सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सदस्य हुकन जानकारी करैलबाट सभाकै बैठकमा राष्ट्रपतिकै कार्यालयसे प्राप्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघकै 21 महासभाकै सभामा भाग लिह नेपाली मन्त्रीमण्डलकै नेतृत्वकर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका गैल कुहरसे प्रधानमन्त्रीकै दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनकै लागि अर्थमन्त्री डाक्टर वागलेहन तोकिलक पत्रकै बेहोरा पर्क सुनाकिल रहा

0: बटुलाबाट महासचिव गुटेरेस तीन वर्ष आग नेपाल भ्रमणकै क्रममा हिम नदी तीव्र गतिमन पगलटी रलक बटुटी विश्व समुदाय चेतावनी दिएर रह उहाँ नेपालकै भोटेकोशी बाढ़ी जसिन विपदलेखन जलवायु जन्य समस्या वास्तविकतामा परिणत कलक स्पष्ट पलबाट महासचिव गुटेरेस जलवायु परिवर्तनसे उत्पन्न जोखिम आ भविष्यकै विषय निहोक वर्तमानकै वास्तविकता बन्सेकलक स्पष्ट प्रति विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन मन न्यून योगदानकना मुलुक हुक्र नै एकल भारे मूल्य चुकैतिरलक उल्लेख करलबाट वहाँ जलवायु न्यायकी आवश्यकता उल्लेखी प्रदूषण करिया हुक्र नै वाकर मूल्य तिरपना वा जलवायु जन्य विपक्षे प्रभावित जोखिम रहलक मुलुक क्षतिपूर्ति स्वयं न्याय स्वरूप न्याय तथा आवश्यक वित्तीय सहयोग पाइपना धारणा व्यक्त करलबाट सम्भावित भारे वर्षा उइसे निम्त सेक्ना बाढ़ी तथा पहिरो के जोखिम मध्ये नजर कटी सरकार लद्या के अवस्था व सम्भावित विपद के निरन्तर निगरानी कर्क सर्वसाधारण हुकन घण्टा घण्टामा पूर्व सूचना देना हुल्बा ऐना शुक्रबार थेसे आइतबार असोज 8, 9, 10 गते सम्म देशकै अधिकांश भूभागमा भारी वर्षाकै सम्भावना रहलक मर्से विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकारकै तयारी स्वरूप पूर्व सूचना प्रणाली चुस्त बनागिलक हो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकै कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीकै अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखासे निरन्तर समन्वय गर्क लद्याकै जल सतह व जोखिमकै अवस्था रियल टाइममा निगरानी कर्जैनाबा सम्भावित बाढ़ी खतरा के तहमन कब पुगी व उइसे कसिन प्रभाव पार सकिकना प्राविधिक विश्लेषण कैक हरेक घण्टा सूचना अत्यावधिक गर्न उहाँ जानकारी देलबाट ए समाचार के संग खोज खबर ओराइल अन्तिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फेर्से मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना ध्यान दिएको काम गर मौसमविद नागरिक हुन आग्रह कैलालीकै डल्फिन क्षेत्रमा डल्फिनकै गणना वा आहार सर्वेक्षण करगिल शिव पार्वती महिला सामुदायिक वन उपभोक्ताकै आईआर जन्मन सहयोग कर्ती सहयोग पाइपाछ उपभोक्ता हुँक्रा खुशी ओ प्रतिनिधि सभासे भुक्तानी तथा फर्छेट पहिल संशोधन विधेयक स्वीकृत लिटा अबक्ला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा मना खोज खबर सुन सेग्दी आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी यहां धन्यवाद देती मई गीता चौधरी फिर विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
1: लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
2: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पूर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
1: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000।

0: कागजात हराएको सूचना। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कमला सुडारीको पासपोर्ट कक्षा 8-10-12 का मार्कशीट लगायतका कागजातहरू शुक्रबार दिउँसो 12 बजेतिर टिकापुर खडकचोकदेखि जमरा पारी पेट्रोल पम्पसम्म जाने क्रममा बाटोमा हराएकाले पाउनुहुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नम्बर वा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा बुझाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। पाउनुहुने महानुभावहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क नम्बरहरू 97-64-26-70-90 र 98-15-60-67-05।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
2: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशानाटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस्तरा तुहार रामपुरान दिदी यह नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कांसे के कतरा सुगर बना कर लबाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जाए कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98-684-41-208 ओ 98-486-39-261।
3: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाई हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: व्यवहारिसे सब भेटिएको सूचना मिति 2083 साल असोज 7 गते बिहान 11:10 बजेको समयमा जिल्ला कैलाली टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मूलपानी स्थित कर्णाली नदीको किनारमा नामथर बटन खुल्न नआएकी उचाइ 5 फिट 6 इन्च तल्लो शरीरमा कालो रंगको जीन्स प्यान्ट सेतो रंगको पेन्टी दुवै खुट्टामा सेतो रंगको मोजा लगाएकी बायाँ हातमा रक्षा डोरी बाँधेकी कालो लामो कपाल भएकी शरीरका विभिन्न भागमा किरा औंसा परी सरी गली गई छाला निस्केको मध्यम शरीर भएकी अन्दाजी 30-32 वर्षको जस्तो देखिने एकजना महिलाको मृत लास फेला परी टिकापुर अस्पतालको शवगृहमा राखिएकोले चिन्नुहुने महानुभावले प्रहरीलाई जानकारी दिन वा सम्बन्धितले बुझी लैजान हुन अनुरोध गरिन्छ।
1: पैसा तथा पर्स भेटिएको सूचना टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 जमरा पारी मेन्थादेखि समितिपुर जाने बाटोमा मेरीगोल्ड स्कूलको बसमा विद्यार्थी पुर्याउन जाने क्रममा केही दिन अघि बेलुका 4 बजेतिर कालो पर्स औषधि र केही पैसा भेटिएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले लोकबहादुर सारू मगरको मोबाइल नम्बर 97 44 28 72 02 वा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा सम्पर्क गरी बुझी लैजान हुन अनुरोध गरिन्छ। पैसा दावी गर्ने व्यक्तिले पर्समा रहेको जम्मा रकम भन्न सक्नुपर्छ।
2: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल
3: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो नि करत का कैना हो का
2: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना पट्रा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए तो था पाए।
4: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।